0: वो तो कर रहा। दूसरा महीना आकांगी कभी कुफ कभी कक है तक कपड़ी की लाई पहनी मन मैं कल फोन की ये फिर फुलिया तक वकील
1: А я поставлю песню Little Натали «Считалочка».